इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।